आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा भोर सुहाने की। और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 5:34 और 58 सेकेंड। मैं हूं आपके साथ फिरोज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भोर सुहानी की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, एक नए दिन में हम सब कदम बढ़ा चुके हैं और एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई रोशनी के साथ। मगर इन तमाम चीज़ों में एक बेहद परेशान करने वाली भी चीज़ होती है जो हमारे जहन में कई बार ये बात आती है, और वो होता है किसी भी हार का। हार एक ऐसा शब्द है जिससे सिर्फ इंसान ही नहीं टूटता बल्कि उसके हौसले भी टूट जाते हैं, उसके इरादे भी टूट जाते हैं। मगर ये हमेशा के लिए नहीं होता। हार सुनने में भले ही छोटी सी बात लगे, लेकिन जब हार हमारे सामने खड़ी होती है तो दिल थोड़ा मायूस ज़रूर होता है। लगता है शायद हमसे नहीं हो पाएगा, शायद हमारी कोशिश में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। और ऐसे ख्यालात जब बार बार आने लगे तो फिर आप पीछे की तरफ बढ़ने लगते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए ताकि हमें उसमें कामयाबी मिले। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर हर कोशिश पहली बार में कामयाब हो जाती तो शायद हमें सब्र, हौसले और मेहनत की असली कीमत कभी समझ में ही नहीं आती। इसलिए हार भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसकी अहमियत को समझ पाते हैं, उस जीत की अहमियत को समझ पाते हैं। हार हमारी मंजिल नहीं है, वो तो रास्ते का एक पड़ाव है। वो हमें बताती है कि कहाँ सुधार करना है, कहाँ फिर कोशिश करनी है और कहाँ अपने सपनों पर थोड़ा और यकीन रखना है। आज की सुबह अगर आपके सामने कोई मुश्किल है तो उससे घबराइए मत, उसे देखकर बस इतना कहिए, मैं फिर कोशिश करूंगा क्योंकि मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। याद रखिए, गिरना बुरा नहीं, गिरकर उठने की कोशिश छोड़ देना ज़रूर हमें रोक देता है। तो आज अपने दिल में उम्मीद रखिए, चेहरे पर मुस्कान रखिए और कदमों में हौसला, क्योंकि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बहुत सीधा है, हर हार अपने भीतर एक नई जीत का रास्ता छुपाए बैठी है इस नगमे की तरह।

हार के बाद ही जीत है। गिरना संभलना हारना जीतना ये हमें रोकता नहीं बल्कि हमें नए हौसले के साथ आगे बढ़ना सिखाता है। रास्ता कितना भी मुश्किल हो मुझे रुकना नहीं है, बस यही याद रखना है। ज़िंदगी में ऐसे मकाम ज़रूर आते हैं जब मेहनत के बाद भी नतीजा हमारे मुताबिक नहीं मिलता, मन मायूस होता है, लगता है शायद अब आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, हार हमारी ज़िंदगी के सफ़र का एक मोड़ है जो हमें रोकता नहीं बल्कि एक दूसरा रास्ता दिखाता है अपनी मंजिल तक पहुंचने का। इसलिए कभी भी उस मोड़ से, उस रुकावट से घबराएं नहीं। कभी कभी वक्त हमें रोकता नहीं बल्कि हमें तैयार करने की कोशिश में लगा रहता है। वो हमें इस बात के लिए तैयार करा रहा होता है कि आप सफलता के लिए तैयार रहिए, कोशिश कीजिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। एक असफल कोशिश हमें बताती है कि अगली कोशिश में क्या बेहतर करना है। इसलिए गिरिए तो उठिए, थकिए तो थोड़ा ठहरिए, लेकिन अपने ख्वाबों से रिश्ता मत तोड़िए। आज अगर आपके सामने कोई इम्तहान है, कोई परीक्षा है, चाहे वो ज़िंदगी का हो या रिश्तों का हो या आपके सपनों का हो, तो पूरे हौसले के साथ उसका सामना कीजिए, उसका मुकाबला कीजिए और इसी जज्बे को बेहद खूबसूरती से आगे बढ़ाते रहिए। क्योंकि ज़िंदगी हार मान जाने का नाम नहीं, रुक जाने का नाम नहीं। रुकना तो कतई नहीं है, बस चलते रहना है इस नगमे की तरह।

0: किशोर कुमार साहब के गाए इसी गीत के साथ आज के भोर सुहानी को यहीं पर समाप्त करने की मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाज़त, फिर होगी हमारी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वंदे मातर
1: सुजलां सुफलां मलयज शीतलां।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। श्री गोयल ने कहा कि भारत की विनिर्माण क्षमता घरेलू और वैश्विक मांग की पूर्ति कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड के कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की। बैठक में दोनों देशों के बीच कृषि के क्षेत्र में जारी सहयोग की समीक्षा के साथ ही आपसी सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करके कृषि के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती प्रदान करने पर बल दिया गया। दोनों पक्षों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के आपसी संकल्प को दोहराया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि एवं बागवानी के क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोबोटिक्स चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में जांच, उपचार और चिकित्सा देखभाल का महत्वपूर्ण साधन बनने जा रहा है। डॉ. सिंह ने सोसाइटी ऑफ रोबोटिक सर्जरी SRS के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रोबोटिक्स AI और नैनो विज्ञान से सटीक और व्यक्ति की जरूरतों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं को नया तंत्र विकसित में होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में रोबोटिक्स चिकित्सा, रोबोटिक एंड्रोक्रोनोलॉजी और रोबोटिक कार्डियोलॉजी जैसे क्षेत्र उभर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने किसानों के लिए बेहतर पानी, आधुनिक तकनीक और अच्छी सुविधाओं की जरूरत बताई।

0: वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को बाल देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और वर्ष 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इन 30 स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% की छूट मिलेगी। जापान में एशियाई खेलों में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India has called for WTO compliant approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 trade ministers meeting in Milwaukee, US. Speaking on structural excess capacity and production, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said, India shares the concerns of many members that trade distorting support in some economies can lead to dumping and predatory pricing. He said such concerns are addressed through WTO consistent measures, including anti-dumping and countervailing duties based on evidence and subject to judicial review. He emphasized that industrial capacity in itself is not the issue, while distortions can arise where geographical concentration of production is driven by hidden subsidies and support. The group of 7 G7 nations have agreed to release 100 million barrels of oil over 4 months in an effort to ease soaring fuel prices, with a substantial release of diesel planned in the first 20 days. The decision came as diesel prices in the United States climbed to record levels, adding pressure on President Donald Trump and his administration ahead of November's midterm elections. Mr. Trump said that European countries had agreed to release large quantities of diesel from their stocks and that the process would begin immediately. The announcement followed an overnight conversation between Trump and French President Emmanuel Macron. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the Global Horticulture Hub will strengthen the horticulture sector and create better opportunities for farmers in the Rayalaseema region of Andhra Pradesh. Ms. Sitharaman laid the foundation stone for the Rayalaseema Global Horticulture Hub project and the Indian School of Agriculture at Madanapalle in Annamaya district yesterday. Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh has said that robotics is set to become an important tool across medical specialties, covering diagnostics, treatment and therapy. Addressing the International Conference of the Society of Robotic Surgery, he said that robotics, artificial intelligence and nanoscience will create an ecosystem for precision and personalized healthcare. Mr. Singh said that the future could see the emergence of robotic medicine, robotic endocrinology and robotic cardiology, just as AI is finding applications across different medical specialties. Union Minister for Port, Shipping and Waterways Sarbanand Sonowal has called

तद्धिम तद्धिम तकथिमि तकछनु तकथिमि तकछनु ताम तद्धिम तद्धिम तकथिमि तकछनु तकथिमि तकछनु ताम धिम तोम नम तरगड़तुम तरगड़तुम तरगड़तुम।

0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
2: स्वागत है दोस्तों आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। आज की पहली अपडेट में मेरे साथ हैं साक्षी मांडवाल और मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी। आज की सुबह बेहद सुहानी कह सकते हैं, बेहद खूबसूरत सुबह कह सकते हैं। भारत ने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। अभी अभी जस्ट जब हम आपसे जुड़े हैं उसी वक्त गोल्फ में भारत को गोल्ड मेडल मिला है। जी हाँ, भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्फ का गोल्ड मेडल जीत लिया है और वो भी जीता है किस खिलाड़ी ने, प्रणवी ने जीता है। जी हाँ, पणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया। एशियन गेम्स से पहले पदक की प्रबल दावेदारों में उनका नाम हालांकि नहीं शुमार था, लेकिन पणवी ने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंकाते हुए भारत के लिए महिला गोल्फ का पहला व्यक्तिगत जो सोना है, गोल्ड है एशियन गेम्स का, वो दिला दिया। ये उपलब्धि भारतीय गोल्फ के इतिहास में एक नया अध्याय कह सकते हैं। बिल्कुल साक्षी,
3: जरूर शाहिद। एंड अपने श्रोताओं को हम ये भी बता दें कि इससे पहले जो गोल्फ के अंदर इंडिविजुअल गोल्ड आया था वो शिव कपूर लाए थे 2002 में। तो यानी 24 साल का इंतजार आज जाकर समाप्त होता है विद दिस ब्यूटीफुल गोल्ड दैट प्रणवी उर्स हैज बॉट फॉर द कंट्री। एंड अलॉन्ग विद दैट, प्रणवी, अदिति एंड दीक्षा ऑल्सो क्लिंच्ड द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स टीम इवेंट इन गोल्फ। चलिए आपको दूसरी तरफ भी लेकर चलते हैं, दूसरी खबर की तरफ, जो आने वाली है आर्चरी की दुनिया से, जहां आज हिस्ट्री बन गई। Kumkum Mahod has created history. She became the first Indian women's recurve archer to win a gold medal at the Asian Games. जी हाँ, पहली महिला भारतीय आर्चर जिन्होंने गोल्ड दिलवाया एशियन गेम्स में भारत को। In a thrilling final, she beat her Korean opponent Oh Hee-jin via a shoot-off. India's final day at the Asian Games 2026 begins on a golden note. She had an extraordinary debut campaign for India at the Asian Games. She finished with 2 golds and 1 silver medal. दोस्तों मैं बात कर रही हूँ कुमकुम मोहत की। And as part of the women's team, she won the first gold medal for India in this event. Her mixed team silver was also the first medal for India in that category. Ultimately, she became the first Indian woman to win a gold medal in a recurve इंडिविजुअल इवेंट। शायद
2: जी बिल्कुल, बात करते हैं कुश्ती की, जहां मैट पर उठा पटक जारी है। 2 पहलवान जहां बाहर हो गए, वही 3 पहलवान अभी भी मेडल की रेस में बने हैं। भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए कजाकिस्तान के नूरदान एतानवो को 12-1 के बड़े अंतर से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। इससे पहले अमन सहरावत ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान के यामातो ओगावा को 20-9 से हराया था। मुकाबले के पहले हाफ में अमन 8-9 से पीछे थे, लेकिन दूसरे हाफ में उन्होंने जबरदस्त पलटवार करते हुए 12 अंक जुटाए और तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर मुकाबला अपने नाम कर लिया। उधर अंतिम पंगाल, भारत की सनसनी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उज़्बेकिस्तान की एसबोनसीवा साकिब जमाल को 8-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। अंतिम ने इससे पहले आज की अपनी पहली जो प्री क्वार्टर फाइनल कुश्ती है उसमें कजाकिस्तान की सुग्याला ओमरीबेकोवा को 9-0 से शिकस्त दी थी, जबकि 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत के सागर जगलान को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हारकर सामना करना पड़ा। वहीं सागर को ईरानी पहलवान जो मौजूदा चैंपियन है योनेस इमागोचोई ने 10-0 से हराया था। अब सागर उम्मीद करेंगे कि उनके जो विरोधी पहलवान है वो फाइनल पहुंचे और रेपेचेस खेलें। उधर 57 किलोग्राम महिला वर्ग में जिस तरह मनीषा अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गई, हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन्होंने शानदार तरीके से जीत दर्ज की थी।
3: जी, और टैक्वेंडो में आपको बता दें कि कशिश मलिक हैज बोर्ड आउट ऑफ द वुमेन्स 56 केजी राउंड ऑफ 16 इवेंट एट द एशियन गेम्स। शी वाज डिफीटेड बाय किम यूजिन ऑफ साउथ कोरिया इन दिस राउंड। ज्योति राज यादव now remains India's only hope in the sport as she gets ready for a round of 16 match. Or in the semi-final, unka mukabla hua Zhu Zingyi of China se. Wahi women's 67 round KG round of 16 mein Jyoti Yadav, jinka mukabla hua Kannalak Chuanchulin se, wahan par bhi Jyoti Yadav ko haar ka samna karna pada 15-4, 15-2 se, yani 0-2 se she lost that round. She has thus been knocked out and India's campaign in the sport also ended with this loss.
2: अगली खबर की तरफ चलूं उससे पहले बता दूं कि दीपक पुनिया भी अभी भी बने हुए। उन्होंने अपना पहला मुकाबला जीता था, वो सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। वहीं ताइक्वांडो की बात करते हैं, महिलाओं के 67 किलोग्राम भार वर्ग के राउंड ऑफ 16 में मुकाबला जो था वो ज्योति का, जैसा कि अभी साक्षी ने बताया, उन्होंने जीत हासिल की है। जी हाँ, आज की जो शुरुआत हुई साक्षी बेहद शानदार रही, दो गोल्ड आए। वहीं कुश्ती में तीन पहलवान अभी भी पदक की तरफ बढ़े हैं, यानी आने वाला जो अगला घंटा वो भी अब बेहद खास होने वाला है।
3: जी एंड अ वेरी क्विक रैप अप ऑन हाउ द मेडल टेबल प्रेजेंटली स्टैंड्स एट द लास्ट डे ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स। भारत इस समय है पांचवें स्थान पर आज दिन की शुरुआत में, कुल उसके पास है 77

0: मेडल्स जिसमें 17 गोल्ड 25 सिल्वर 35 ब्रॉन्ज है. लेट्स सी हाउ द डे एंड्स फॉर इंडिया. फॉर नाउ दिस इज मी साक्षी मांडवाल एंड मोहम्मद शाहिद आजमी साइनिंग ऑफ. हम आपके साथ एक बार फिर से सुबह के 10:30 बजे जुड़ेंगे विद ऑल द लाइव अपडेट्स एंड ऑल्सो एन अपडेट ऑन द इंडिया पाकिस्तान फाइनल क्रिकेट मैच ऑल सेट टू बिगिन.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
2: अभी आप

0: Games 2026 updates.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूं साक्षी मांडवाल। मेरे साथ दोस्तों इस वक्त यहां पर मौजूद है मोहम्मद शाहिद आजमी और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए सुबह के 10:30 के लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026 के। आज है आखिरी दिन ऑफिशियली अगर देखा जाए तो खेलों का, खास तौर से इंडियन रिप्रेजेंटेशन का, व्हेन इट कम्स इन द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026, बिकॉज टुमारो द एशियन गेम्स कम्स टू इट्स फॉर्मल ऑफिशियल क्लोजर ऑल्सो। बट अगर आज की सुबह की बात करें तो बहुत अच्छी शुरुआत आज भारतीय खिलाड़ियों ने दी, खासतौर से गोल्फ को सबसे पहले मैं बताती हूँ, जहाँ प्रणवी उर्ज ने आज हिस्ट्री बना दी बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर

0: India at the Asian Games 2026. Pranavi, Aditi and Deeksha, the entire team also then went on to get the silver medal in the women's team event in golf. No Indian has ever won an individual gold in golf since Shiv Kapoor did that in 2002. Yani 24 saal ke intezaar ke baad aaj jaakar wo intezaar samapt hua ek individual gold ka golf mein jo Pranavi Urs Bharat ke liye Asian Games mein lekar aayi. Iske saath aapko ye bhi bataye Pranavi Urs held her nerves to win the women's individual gold medal, finishing the four-round competition at 15 under par. She made par on the final hole, as did Singapore's Shannon Tan and China's Yin Roning, who finished on 14 under to share the silver medal. Aditi Ashok and Deeksha Dagar celebrated by dousing Pranavi with water on the course after a memorable victory.
1: जी, अब एक और अच्छी खबर श्रोताओं को बताएं. नागोया में भारत की 70,000 की तीरंदाज कुमकुम अनिल मोहोद ने आज ऐसा निशाना साधा कि इतिहास बन गया. एशियन गेम्स में पहली बार किसी भारतीय महिला ने रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है. कुमकुम ने रोमांचक फाइनल मुकाबले में कोरिया की येजिन ओह को 6-5 से हराया. मुकाबला इतना करीबी रहा कि फैसला शूटआउट में हुआ, जहां कुमकुम ने 10-8 से बाजी मारकर सोना अपने नाम किया. स्कोर लाइन की बात कर लेते हैं तो कुमकुम ने 27-29, 29-29, 30-29, 27-28, 30-28 और शूटआउट में 10-8 से मुकाबला अपने नाम कर लिया. और यह कुमकुम का इस एशियन गेम्स में तीसरा पदक है. महिला टीम रिकर्व में स्वर्ण जबकि मिश्रित टीम में रजत पदक, अब व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक हासिल कर लिया. 17 साल की कुमकुम का यह एशियन गेम्स का जो पदक है उन्हें LA यानी लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट भी दिला गया है.
0: Right, and now a quick update on cricket, where the India versus Pakistan gold medal match is underway currently. India won the toss today and chose to bat first. Batting, India so far has put, or rather made, 75 runs for the loss of 2 wickets in 5.2 overs, the current run rate being 14.06 per over. India lost 2 quick early wickets of Vaibhav Suryavanshi at 15 and Sanju Samson at just 2 runs. But Abhishek Sharma, who is presently on 46 and 16 balls, and Shreyas Iyer, who has just come onto the ground and has made 3 runs in 4 balls, have been able to solidify and give India a steady start and momentum. Also, Abhishek Sharma presently is just 4 short of his half century. India definitely in a commanding position in the 6th over as of now in this match.
1: Kushti ki baat kar lete hain. Sakshi, kushti ke akhade se Bharat ke liye shandar khabar aayi. Bharatiya pehlwanon ne damdar pradarshan karte hue 2 varg ke final mein jagah bana li, jabki 2 pehlwan kaansya padak ke liye muqabla karenge. Mahila 53 kg freestyle mein Antim Panghal ne shandar waapsi करते हुए फाइनल में जगह बनाई. सेमीफाइनल मुकाबले में अंतिम शुरुआत में 0-1 से पीछे चल रही थी, लेकिन उन्होंने जबरदस्त पलटवार करते हुए कुछ ही सेकंड में 6-1 कर दिया और इस शानदार जीत के साथ अंतिम ने अपना पदक पक्का कर लिया. अब वो स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगे. वहीं अमन सहरावत, अपनी ख्याति के अनुसार उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है. 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में सेमीफाइनल में कमाल की वापसी करते हुए फाइनल का टिकट उन्होंने हासिल किया. ताजिकिस्तान के अयाला बोलोस्क्यूकी के खिलाफ अमन पहले पीरियड में 2-6 से पीछे थे, लेकिन दूसरे पीरियड में भारतीय पहलवान ने ऐसा पलटवार किया कि मुकाबले का रुख पूरी तरह से बदल दिया. अमन ने दूसरे पीरियड में 12 अंक बटोरे और आखिर में मुकाबला 14-8 से जीत लिया. उधर सागर जगलान ने शानदार जीत दर्ज की और पुरुषों के 74 किलोग्राम फ्रीस्टाइल के रेपचेज मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए अब कांस्य पदक के लिए मुकाबला खेलेंगे. यहां पर इन्होंने 7-3 से जीत दर्ज कर ली. लेकिन एक और मुकाबले की बात कर लेते हैं. 97 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में दीपक पुनिया को सेमीफाइनल में करीबी मुकाबले में हार मिली. उज्बेकिस्तान के शोर्डेट्स के खिलाफ 9-8 से उन्होंने जो 8-9 से शिकस्त मिली थी, उसके बाद अब वो ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला करेंगे.
0: Right, and a quick update on the medal table. Presently, India is on the fifth position with a total of 79 medals, जिसमें 18 gold, 26 silver और 35 bronze medal हैं. जी हाँ, एक और gold medal भारत अपने नाम अभी कर चुका है, इसलिए हमारी position medal table पर अब 5वीं हो चुकी है. देखना होगा कि आज दिन की समाप्ति तक भारत किस प्रकार से एशियन गेम 2026 में अपने खेलों के इस सफर की समाप्ति करता है और मेडल टेबल पर भारत कहां पर जगह गाएगा. फिलहाल के लिए मुझे साक्षी मांडवाल और मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए इजाजत. हम आपसे दोबारा एक बार सुबह 11:30 बजे जुड़ेंगे विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स.
2: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया.

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।
2: कमिंग अप नेक्स्ट विल बी न्यूज हेडलाइंस।
3: ఆకాశవాణి సమయం 11:00 అవుతుంది. వార్తల ముఖ్యాంశాలు విందాం.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत लाने पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क के नाम से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित कराया। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर मादक पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने व्यापारिक बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत

0: भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। श्री गोयल ने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री गोयल ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंट्स सीमा पार कराधान नियामक अनुपालन और वित्तीय प्रबंधन में व्यवसायों की सहायता करके भारतीय उद्यमों को वैश्विक पूंजी निवेश के लिए तैयार करके भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने शिकागो, मिशिगन और ओहियो शाखाओं के भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नेतृत्व और सदस्यों के साथ एक वार्ता के दौरान ये बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और इस पर 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल बाजार में जारी करने का निर्णय लिया है। अमरीका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे। ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में आज सुबह 9:43 पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। हिंगोली जिला प्रशासन ने निवासियों से शांत रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। प्रणवी देश के लिए गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इससे पहले वर्ष 2002 में शिव कपूर ने पुरुष स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में धीरज बोम्मा देवरा को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। कल महिला हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था और क्रिकेट के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 212 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक पाकिस्तान दूसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन पर खेल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Vice President C.P. Radhakrishnan today stressed the need for policy makers to understand the ground realities while framing policies for economic and social development. The Vice President was addressing the 5th Kautilya Economic Conclave 2026 in New Delhi. Mr. Radhakrishnan said that policies should be flexible enough to adapt to changing situations and ensure their implementation. The Vice President noted that India's ongoing economic reforms are rooted in the country's democratic traditions and the process of consensus building. He said that economic resilience cannot be separated from social resilience and development must benefit all sections of society and every region of the country.
3: Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
2: Madhya Pradesh is holding a major event today to promote milk

0: RJ Kaivalya.
1: And this is RJ Priya Bandhavi.
0: Here we are to talk about National Techies Day. तो प्रिया मुझे एक बात बता, आज सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या किया तूने?
1: Honestly, अलार्म स्नूज किया, फिर फोन उठाया, QR कोड स्कैन करके कॉफी ऑर्डर की और कैब बुक करके स्टूडियो आ गई. Why are you asking me this?
0: I mean exactly my point. सुबह के पहले 30 टू 40 मिनट्स में तूने कैब्स, पेमेंट्स, मैप्स, ऑनलाइन फूड डिलीवरी सब यूज कर लिया. पर कभी सोचा है कि ये सारा मैजिक बैकग्राउंड में करता कौन है?
1: सिंपल है ना कैवलिया, कोड लाइंस, एल्गोरिदम्स, नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द ब्रिलियंट माइंड्स बिहाइंड देम, आर टेकीज.
0: बिंगो. और आज वही दिन है जब हम इन अनसीन हीरोज को सैल्यूट करते हैं. तो टुडे इज नेशनल टेकीज डे, a day dedicated to celebrating tech wizards and inspiring the next generation to step into STEM fields, which is science, technology, engineering and math.
1: Exactly, Kaivalya. और सच कहे तो आजकल टेक का मतलब सिर्फ डार्क रूम में बैठ के स्क्रीन पे ग्रीन कोड कर टाइप करना नहीं है. टेक इज लिटरली एवरीथिंग.
0: Totally. गेम डिजाइनर बनना हो या फिर AI आर्ट क्रिएट करना हो या फिर स्पेस रॉकेट्स लॉन्च करने हो या फिर मेडिसिन में लाइफ सेविंग टेक बनाना हो, टेक एवरीवेयर इज द अल्टीमेट सुपर पावर.
1: ट्रूली कैवलिया. लेकिन पता है क्या, बहुत से यंग किड्स और स्टूडेंट्स सोचते हैं, यार मैथ इतनी टफ है, कोडिंग तो मेरी बस की बात नहीं है. बट द ट्रूथ इज टेक इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी.
0: 100%. पहले लगता था कंप्यूटर इंजीनियर मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर डीबगिंग. आज लुक एट द ऑप्शंस यार, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, AI प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, रोबोटिक डेवलपर्स एंड इवन एथिकल हैकर्स. द स्कोप इज एब्सोल्युटली माइंड बेंडिंग.
1: सो इफ यू आर अ स्टूडेंट लिसनिंग टू अस राइट नाउ, डोंट बी अफ्रेड टू टिंकर. एक छोटा सा गेम बिल्ड करने से लेकर आगे जाके वर्ल्ड चेंजिंग एप्स बनाने तक, योर जर्नी इन स्टेम स्टार्ट्स विद वन क्यूरियस क्वेश्चन. ये काम कैसे करता है?
0: Exactly. And we'll talk more about this after this song. But before that, here's a promo.
2: Irani chai.
3: Bun maska.
2: Hyderabadi biryani.
3: Tangdi kebab.
2: Kurbani ka meeta.
3: Shehdood malai.
2: Hyderabad is a grand buffet.
3: And every dish has a story waiting to be told.
2: Exactly. That's why Jashne Hyderabad is your afternoon treat.
3: From 2 to 3 p.m. every day on FM Rainbow 101.9.
2: It's not just food.
3: It's culture, history and flavor rolled into one.
2: Jashne Hyderabad.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द लाइव अपडेट ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। दोस्तों मैं हूं साक्षी मांडवाल, मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद आजमी और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए इस वक्त के सबसे अच्छे अपडेट्स, बड़े अपडेट्स, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मुकाबले की। द T20 मैच दैट इज प्रेजेंटली ऑन फॉर द गोल्ड मेडल, इंडिया वन द टॉस, डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने एक बहुत ही विशाल स्कोर 211 का 20 ओवर में बनाया फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, जिसमें दो बल्लेबाजों की बहुत अहम कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे। उसमें एक थे अभिषेक शर्मा हु मेड 61 एंड 28 बॉल्स व्हिच इंक्लूड 3 4 7 6s, एंड द अदर वन वाज ईशान किशन, माय अपोलॉजीज, द अदर वन वाज तिलक वर्मा हु मेड 51 इन 22 बॉल्स। ईशान किशन की भी हम कह सकते हैं साझेदारी जो रही तिलक वर्मा के साथ वो बहुत जरूरी रही, क्योंकि उसी ने बूस्ट दिया तिलक वर्मा को हाफ सेंचुरी बनाने के लिए और साथ ही साथ भारत को एक बहुत ही सॉलिड टोटल पर फिनिश कराने के लिए। बदले में हमने देखा जब पाकिस्तान अभी बल्लेबाजी करने उतरी है तो उन्होंने अपने निर्धारित 20 ओवरों में से 8 ओवर हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान ने सिर्फ 51 रन अभी तक बनाए हैं और 3 विकेट उनके जा चुके हैं। एंड वी कैन से दैट इट इज द अक्षर पटेल शो दैट हैज बीन सो फार ऑन, क्योंकि साहिबजादा परान को अक्षर पटेल ने कैच पकड़ के आउट किया वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पे, मां सदाकत भी आउट हुए तो अक्षर पटेल की गेंद पे हुए, उस्मान खान भी जो इनके विकेट कीपर है उनको भी अक्षर पटेल ने ही आउट किया। तो एक तरीके से बापू शो इज ऑन राइट।
2: जी बिल्कुल, क्रिकेट में हम बिल्कुल गोल्ड मेडल के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन एक गोल्ड मेडल की बात कर लेते हैं जो सुबह आया। प्रणवी उर्स ने एशियन गेम्स में इतिहास रचते हुए महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले में स्वर्ण पदक जीत लिया। जी हां, 23 साल की प्रणवी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी है। प्रणवी ने 15

0: 265 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने आखिरी होल पर शानदार संयम दिखाते हुए पार खेला और सिंगापुर की शैनन सुआन टिन टैन तथा चीन की तीन रुओंग को एक शॉट पीछे छोड़ दिया। इससे इसके बाद महिला टीम स्पर्धा में भी भारत ने रजत पदक अपने नाम किया। पणवी उर्स अदिति अशोक और दीक्षा डागर की भारतीय टीम ने चार राउंड में कुल 14 अंडर 546 का स्कोर किया। चीन ने 22 अंडर 538 के साथ स्वर्ण और चीनी ताइपे ने 10 अंडर 550 के साथ कांस्य पदक जीता। वहीं पुरुषों की बात कर लेते हैं, वीर अहलावत छठे स्थान पर चल रहे हैं।
1: जी आज रिकर्व में भी आपको कुछ अपडेट्स दे दें, क्योंकि भारत की तरफ से धीरज बम्बा दिवारा और नीरज चौहान केम फेस टू फेस फॉर द ब्रॉन्ज मेडल मैच। और हमने देखा कि नीरज वाज एबल टू सिक्योर द ब्रॉन्ज मेडल इन हिज नेम। दिस वाज अ मैच दैट हैपेंड बिटवीन टू इंडियन शूटर्स कैन वी से। सो धीरज स्टार्टेड विद एन 8 बिफोर नीरज शॉट अ 10। धीरज हिट अ 10 फॉलोड बाय अ 9 बाय नीरज। धीरज देन अगेन वेंट ऑन टू हिट अनदर 10 एंड देयर बाय द मैच वाज वन बाय नीरज 6-4 की रीडिंग पर टू secure the bronze medal in his name. आपको बता दें कि साउथ कोरिया finished off with the gold in the men's individual recurve, defeating Japan's junior Nakanishi 6-2 in the final. As a result, we saw that Japan got the silver while Bharat ke Neeraj Chauhan took the bronze medal.
0: जी कुश्ती से भी हम दो पदक यानी दो गोल्ड मेडल की उम्मीद कर सकते हैं। अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में सेमीफाइनल में कमाल की वापसी करते हुए फाइनल का टिकट कटा लिया है। ताजिकिस्तान के आयाल बोलोस्क्यूबी के खिलाफ उनका जो मुकाबला था, अमन ने पहले पीरियड में 2-6 से हालांकि वहां ट्रेल कर रहे थे, पीछे थे, लेकिन दूसरे पीरियड में भारतीय पहलवान ने ऐसा पलटवार किया कि मुकाबले का रुख बदल दिया। अमन ने दूसरे पीरियड में 12 अंक बटोरे और आखिरकार 14-8 से मैच अपने नाम कर लिया। अमन सहरावत का फाइनल मुकाबला बेहद सख्त होने की संभावना है, क्योंकि उनके सामने डीपीआर कोरिया के चांग सॉन्ग हान होंगे, जो पुरुषों के 57 किलोग्राम की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर है। वहीं अमन की मौजूदा रैंकिंग 20। खैर जब बात पहलवान की हो और मैट पर पहलवान उतर जाता है तो कागज पे क्या लिखा वो धरा का धरा रह जाता है। वहीं महिला 53 किलोग्राम में अंतिम पंगाल पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल में पहुंच गई हैं। उनके बारे में बताएं तो 53 किलोग्राम का खिताबी मुकाबला उनका सामना होगा 19 की क्योंकि मोए से जापान की खिलाड़ी हैं। हालांकि यहां पर अंतिम पंगाल मजबूत स्थिति में, वर्ल्ड नंबर 1 अंतिम पंगाल यहां पर गोल्ड मेडल जीत सकती हैं।
1: Right, and also a quick update from the world of volleyball, where Indian men's volleyball team finished 6th after losing their 5th and 6th place match to Thailand 3-2. India's campaign included a stunning fight back against Qatar, but a defeat to Pakistan ended their hopes of reaching the semi-finals. And as a result, Bharat ki men's volleyball team ne is Asian Games ke andar is haar ke saath apne is safar ka bhi yahan par samapan kar liya. Aur aapko ye bata de, Bharat aaj kyunki Bharatiya representation ka Asian Games the last day, aur officially bhi hum baat kare to majority of the games today get over in the ongoing Asian Games 2026. कल एक ही या दो मुकाबले रहेंगे, तो भारत अभी प्रेजेंटली है 5वें स्थान पर मेडल टेबल पे 80 मेडल्स के साथ, जिसमें 18 गोल्ड, 26 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज है। और अगर भारत चाहता है कि वो चौथे स्थान पर समाप्त करे ongoing Asian Games 2026 में, तो उनको चाहिए कि वो उज़्बेकिस्तान ने जिन्होंने अभी तक 20 गोल्ड कमाए हैं उनके इन गोल्ड मेडल्स को पार करके कम से कम 22 या 21 या 23 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर सके। क्या भारत ही कर पाएगा, दिन की समाप्ति तक हमें पता चल जाएगा। फिलहाल मुझे साक्षी मांडवाल और मेरे साथ साथ मोहम्मद शाहिद को दीजिए इजाजत। हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर से दोपहर के 1:30 बजे। थैंक यू।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: the studio is 1252 and Priya, you were saying something.
1: We were celebrating 16 years of the sci-fi movie Robo.
0: Exactly. तो प्रिया, अब अगर हम एक्शन की बात करें तो इस फिल्म में ना इंडिया सिनेमा में एक्शन का स्टार ही बदल दिया. व्हाट डू यू से? एक्शन को कोरियोग्राफ किया था पीटर, और हॉलीवुड के प्रसिद्ध कोरियोग्राफर जो है, जिन्होंने द मैट्रिक्स और किल बिल जैसे फिल्मों में काम किया है, उन लोगों ने इस फिल्म पर काम किया था.
1: यस, ये रजनीकांत सर जी का पहला फिल्म था जिसमें मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ था. जब चिट्टी पहली बार डॉक्टर वसीकरण की तरह चलना सीखता है, याद है आपको?
0: या
1: वो दृश्य मोशन कैप्चर से बनाया गया था.
0: डैम मैन, इट वाज नॉट रियल देन, लाइक इट वाज मोशन कैप्चर्ड. नाइस. और क्लाइमैक्स में जो रोबोट आर्मी का फॉर्मेशन होता है ना, जहां सैकड़ों चिट्टी मिलकर विशाल गोला दीवार और कोबरा का आकार ले लेते हैं,
1: दैट इज अ क्लासिक.
0: एग्जैक्टली. उसे ना हॉलीवुड की कंपनी लेगसी एफएक्स ने बनाया था, जो पहले स्टैन विंस्टन स्टूडियो का हिस्सा थी और टर्मिनेटर और जुरासिक पार्क जैसे फिल्मों पर काम किया गया था.
1: एंड कैवल्या, सिंस एआई वाज नॉट मेंट देयर, डू यू थिंक चिट्टी इज फुल्ली सीजीआई?
0: Wait. I mean, I know Robo was ahead of its time and they completely didn't rely on CGI, but I'm pretty sure they used a combination of practical robotics, animatronics, as tongue twister as it sounds, and of course digital VFX.
1: Yes, they did, but they also used the manpower. Well, चिट्टी केवल सीजीआई नहीं था, लेगेसी एफर्ट्स ने रजनीकांत सर का एक असली रोबोटिक मैनिक्विन बनाया था, जिसे चाह लोग हरे रंग के क्रोमा सूट पहनकर रॉड्स के मदद से वीएफएक्स से हटा दिया था. ऐसी बना था वो रोबोट का हाथ उठाना, पैर उठाना एंड हेड रोटेटिंग मोशन.
0: वाओ, दैट्स सो इंटरेस्टिंग. और अंतिम में ट्रेन पर जो लड़ाई का दृश्य है ना, उसे आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस में से एक माना जाता है.
1: वेल यस, एंड द स्केल वाज क्रेजी. रोबो हैड ओवर 2000 विजुअल इफेक्ट शॉट्स. रिमेम्बर दैट आइकॉनिक क्लाइमैक्स? यस.
0: या तो यही 16 इयर्स ऑफ रोबो की कुछ अनसुनी कहानियां है. तो और एक गाने के बाद हम लौटते हैं at 1 o'clock with the next segment, Dile Rubani. To suniye Mechanical Sundariya.

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: वेल हम हैं हमारे सेगमेंट यादों की बारात में सेलिब्रेटिंग 16 ईयर्स ऑफ रोबो. जब दुनिया में एआई का मतलब भी नहीं जानते थे तब शंकर सर ने सोचा और वो सोच को मशीन बना दिया. 16 ईयर्स एगो देखा वो सपना, आज हम जी रहे हैं. यही विजन है, यही सिनेमा का जादू है. द डायरेक्टर didn't make a machine, he engineered a cinematic phenomenon. 16 years of Robo still got it. And the next up, we have another song which is similar to the Robo. Ravan movie ka hai. Kaivalya, please play the track.
2: Yes, and with this last song, we will end the segment Yaadon Ki Baarat and move into Dil E Rubani.

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्ने हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 टू 3 पीएम एवरी डे ऑन एफएम रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्ने हैदराबाद।

0: Welcome back to Akashvani Hyderabad. This is 101.9 FM Rainbow and this is me RJ Kaivalya.
1: And this is me RJ Priya Bandhavi.
0: We are in the studio and the clock chimes 1:11, which means it is time to move into the Dile Rubani segment where we talk about inspiring stories, heartwarming achievements or about people around us and with a sense of giving back to the society. So Priya, एक छोटी सी स्टोरी है बट ऑनेस्टली आज भी याद आती है तो फेथ इन पीपल थोड़ा रिस्टोर हो जाता है.
1: अच्छा बोलो क्या हुआ.
0: तो एक दिन ना ऑफिस से घर जा रही थी, फुल ऑन रेन. मैं ऑटो के लिए वेट कर रही थी बट एक भी ऑटो रुक नहीं रहा था.
1: टिपिकल बारिश में ऑटो मिलना फील्स लाइक विनिंग अ लॉटरी.
0: एग्जैक्टली. ऑलमोस्ट 30 मिनट्स तक रोड पे खड़ी थी पूरी तरह ड्रेंच्ड. At that point,

0: क्लाइंट बस घर पहुंचना था।
1: एंड देन
0: तब एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने मुझे नोटिस किया था। उन्होंने पास आके पूछा, क्या हुआ, आप इतनी देर से यहाँ क्यों खड़ी है?
1: ओके, उनको तो लिटरली ट्रैफिक मैनेज करना आता ही है।
0: हाँ, तो मैंने बस बोला कि सर ऑटो नहीं मिल रहा, एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग ट्राई अनदर रोड और एनीथिंग दैट आई कुड पॉसिबली थिंक ऑफ, यू नो व्हाट ही डिड?
1: टेल मी।
0: ही एक्चुअली स्टॉप्ड द नेक्स्ट ऑटो
1: ओके,
0: एंड ऑटो रुकवा कर ड्राइवर से बोला, आप कहीं भी जा रहे हो पहले इनको मेट्रो तक छोड़ दो, फिर आप अपने रूट पे चले जाना।
1: दैट इज एक्चुअली सो स्वीट।
0: आई नो राइट, आई मीन आई स्टिल थिंक अबाउट इट एंड फील सो ग्लैड एंड आई एम फिल्ड विद सो ग्रैटिट्यूड। आई विल टेल यू द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, बट बिफोर दैट हियर इज दिलदारा फ्रॉम रावण।

0: 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और पांचवें सेट तक खींचा। अगर सेट स्कोर की बात करें तो 25-19, 17-25, 25-21, 17-25 और 15-17 रहा। भारत ने 2 सेट जीते लेकिन निर्णायक पांचवें सेट में करीबी अंतर से हार गया।
1: जी, और अगर हम यहाँ पे रिकर्व के मैचेस की बात करें, आर्चरी में रिकर्व के, तो भारत के नीरज चौहान और धीरज बम्मा देवारा आज आमने सामने आए फॉर द ब्रॉन्ज मेडल मैच। एंड उसमें हमने देखा कि नीरज चौहान बीट हिज फेलो कंपैट्रियट इंडियन धीरज बम्मा देवारा 6-4 इन द मेंस इंडिविजुअल रिकर्व ब्रॉन्ज मेडल मैच टू क्लेम द ब्रॉन्ज मेडल। जी हाँ, ब्रॉन्ज मेडल घर में वापस आ गया, ये कहना चाहिए घर ही में आ गया भारत के, क्योंकि दोनों भारतीय आर्चर्स हम कहेंगे आमने सामने आज यहाँ पर थे। धीरज फिनिश फोर्थ आफ्टर सेमीफाइनल डिपीट टू साउथ कोरियाज ली वुसियोक और गोल्ड गया साउथ कोरिया का नाम, सिल्वर रहा जापान के नाम, ब्रॉन्ज आया इसमें नीरज के नाम।
0: जी, रग्बी की बात कर लेते हैं। भारत छठे स्थान पर एशियन गेम्स में रहा रग्बी में। रग्बी सेवंस टीम का अभियान जो महिलाओं का था छठे स्थान पर समाप्त हो गया। पांचवें और छठे स्थान के मुकाबले में भारत को कजाकिस्तान से 0-20 से हार का सामना करना पड़ा। पहले हाफ में कजाकिस्तान ने 10-0 की लीड ली थी, बढ़त बनाई थी, और दूसरे हाफ में भी 10 अंक जोड़कर मुकाबला 20-0 से अपने नाम कर लिया।
1: जी, और अब भारत की एक बार मेडल टेबल के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि अब इस जीत के बाद इस गोल्ड मेडल के साथ जो भारतीय क्रिकेट टीम मेंस क्रिकेट टीम T20 के अंदर हमारे लिए लेकर आज आई अगेंस्ट पाकिस्तान, भारत की जो गोल्ड है गोल्ड मेडल्स वो अब 19 हो चुके हैं। हमसे ऊपर है उज्बेकिस्तान चौथे स्थान पर इस वक्त, जिनके पास 21 गोल्ड मेडल है। यानी भारत को अगर उज्बेकिस्तान के साथ टक्कर में आना है, उनको रिप्लेस करना है चौथे स्थान पर, तो कम से कम हमें उज्बेकिस्तान के 21 गोल्ड के बराबर तो आना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि भारत इस समय 5वें स्थान पर कुल मिलाकर 81 मेडल्स कमा चुका है, जिसमें से ऑफ कोर्स एज आई सेड 19 गोल्ड, 26 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज मेडल हैं। सो ओवरऑल सो फार अपॉलॉजीज ओवर देयर, 18 गोल्ड, 26 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज, व्हिच मेक्स इट 80 मेडल्स इन टोटल फॉर इंडिया। यानी भारत को इस वक्त चाहिए कि वो उज़्बेकिस्तान के साथ अगर बराबरी करना चाहता है तो उनको कम से कम 3 मेडल और कमाने पड़ेंगे। अब देखना होगा कि किस तरह से आज का दिन समाप्त होता है भारत के लिए। उम्मीद करते हैं कि भारत चौथे स्थान पर इस एशियन गेम्स में अपना सफर समाप्त कर पाए। फिलहाल के लिए मुझे साक्षी मांडवाल और मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए इजाजत। हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर से दोपहर के 2:30 बजे।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।

0: జపాన్లో జరుగుతున్న 20th ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏషియన్ గేమ్స్ అప్డేట్స్ ఇప్పుడు.
1: ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 ఐచి నగోయా.
2: స్వాగత హై దోస్తో ఆప్ సబ్కా ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 పర్ తాజా అప్డేట్ కే సాత్. ఘడీ కి సూయి మే 2:30 బజ్ గయే హై ఔర్ ఆజ్ కి సబ్సే ఖాస్ బాత్ హై కి गोल्ड मेडल की हैट्रिक लग गई है. जी हाँ, 3 गोल्ड मेडल भारत ने अब तक जीत लिए हैं, लेकिन आने वाले एक घंटे में कुछ और पदक भारत की झोली में आ जाएंगे. उसी के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा. कुश्ती के मुकाबले शुरू होंगे और अगले एक घंटे में 3 बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले हैं. कुश्ती के मैट पर भारत का शानदार प्रदर्शन जैसा मैंने बताया जारी है. भारत के 4 पहलवान पदक की दौड़ में बने हैं, जिनमें से 2 पहलवान स्वर्ण पदक के लिए और 2 कांस्य पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे. 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में अमन सहरावत ने सेमीफाइनल में ताजिकिस्तान के आयाल बेलुविस्की को 14-8 से हराकर फाइनल में जगह बनाई. अब अमन के पास स्वर्ण पदक जीतने का मौका है. अमन सहरावत का फाइनल मुकाबला डीपीआर कोरिया के चांग सॉन्ग हान से होगा, जो पुरुषों के 57 किलोग्राम की वर्ल्ड रैंकिंग पर टॉप पर है. वही मौजूदा रैंकिंग अमन की बात करें 20 है. वही महिलाओं के 53 किलोग्राम का जो भार वर्ग है वहां अंतिम पंघाल शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल पहुंच गए. अंतिम की नजर अब स्वर्ण पदक पर होगी. सेमीफाइनल का मुकाबला अंतिम ने 6-1 से जीतकर फाइनल में जगह बनाई थी. अब वह स्वर्ण पदक के लिए उतरेंगी. अंतिम पंघाल जो विश्व रैंकिंग के पहले पायदान पर है, खिताबी मुकाबला उनका होगा. उनके सामने होंगी 19 नंबर की जो विश्व रैंकिंग है जापान की क्वे का मोए, उनसे सामना होगा, जो 2024 वर्ल्ड चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट. हालांकि उन्होंने गोल्ड मेडल 55 किलोग्राम भार वर्ग में जीता था. वहीं 2 और मेडल आने वाले जिनके बारे में बता दूं. दूसरी ओर 74 किलोग्राम में जो फ्री स्टाइल का मुकाबला सागर जगलान रिपेचेज मुकाबले में उज्बेकिस्तान के राजमबेक जमालबो को 7-3 से हराकर कांस्य पदक के मुकाबले में जगह बनाई. कांस्य पदक का मुकाबला कुछ देर बाद उनका शुरू होने वाला. जबकि 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल में दीपक पुनिया हालांकि सेमीफाइनल मुकाबले में हार गए थे, लेकिन उन्हें कांस्य पदक मुकाबला जीतने का भी मौका. हालांकि सेमीफाइनल मुकाबला बेहद करीबी था, 8-9 से दीपक पुनिया को शिकस्त मिली थी. यानी अमन सहरावत, अंतिम पंघाल, इसके अलावा सागर जगलान और दीपक पुनिया, इन चारों से पदक की भारत को उम्मीद है.
3: जी, और अब बात कर लेते हैं कि आज का दिन भारत के नजरिए से कैसा रहा. तो सबसे पहले द बिग न्यूज ऑफ द डे दैट केम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट. आपको याद दिला दें कि एशियन गेम्स 2026 में सबसे पहला स्वर्ण पदक हमारे लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम लेकर आई थी T20 के मैदान में. और अब आज आखिरी दिन पर द इंडियन मेन्स T20 क्रिकेट टीम हैज ऑल्सो डिफीटेड पाकिस्तान एंड वन अस द गोल्ड. इसका मतलब ये हुआ कि क्रिकेट जो इस साल इंट्रोड्यूस हुआ हमारे एशियन गेम्स के उसमें कंटिजेंट के अंदर 2 गोल्ड लेकर आया भारत के. आपको बताएं कि भारत ने पहले बल्लेबाजी करके टॉस जीता था, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, जिसमें उन्होंने अपने निर्धारित 20 ओवरों में 211 बनाए थे फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स बाय इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस बिकॉज ऑफ तिलक वर्मा एंड ऑफ कोर्स अभिषेक शर्मा एट द टॉप. एंड देन लेटर पाकिस्तान जब उसको चेस करने आई तो 192 पर पाकिस्तान की पूरी पारी सिमट गई. अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस कमिंग ओवर देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस थैंक्स टू हसन नवाज हु वाज एबल टू मेक 96 इन 51 बॉल्स. उसमें हसन नवाज को 2 बार जीवन दान भी मिला. इसी वजह से पाकिस्तान शायद

0: 192 तक पहुंच गया, बट स्टिल दे फेल शॉर्ट ऑफ द नीडेड रन्स टू चेज द टारगेट। ओवरऑल अगर बात करें तो आज भारत का दिन किस तरीके से रहा, दिन की शुरुआत दोस्तों हमने देखी होती हुई गोल्फ से। यहाँ पर प्रणवी उर्ज ने आज हिस्ट्री बना दी बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया द एशियन गेम्स 2026। ये 24 साल बाद हुआ था, क्योंकि इससे पहले गोल्ड गोल्फ में, अगर इंडिविजुअल गोल्फ में कभी आया था तो वो 2002 में था, जब शिव कपूर हमारे लिए वो गोल्ड लेकर आए थे। और उसके बाद हमने आर्चरी में देखा, अगेन हिस्ट्री गेटिंग क्रिएटेड टुडे, जहां पर कुमकुम महोद ने भी आज गोल्ड मेडल जीत कर हिस्ट्री बना दी आर्चरी के अंदर, जहां इंडियन वुमेन्स रिकर्व आर्चर ने आज एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड जीता। वहीं आर्चरी रिकर्व में भी आज हमने अपने नाम एक मेडल कर लिया। दैट मीन्स आर्चरी ओवरऑल बहुत अच्छा गया, बिकॉज नीरज चौहान वॉज फेस टू फेस विद ऑफकोर्स एन इंडियन धीरज, जो उनके सामने थे धीरज बुम्बा दीवारा, एंड नीरज चौहान ने धीरज को हरा कर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। सो ओवरऑल अ गुड डे फॉर द इंडियन आर्चर्स, एंड डेफिनेटली अ गुड डे इफ यू लुक एट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया ऑल्सो शाहिद, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एशियन गेम्स का क्या लास्ट डे इंडियन पार्टिसिपेशन का।
1: जी बिल्कुल, लास्ट डे, अभी कई मेडल आने बाकी है। कोई भी मुकाबला जीत सकता, कोई भी खिलाड़ी मुकाबला हार सकता, ऐसा ही एक मुकाबला हारी है एक खिलाड़ी फुजिनामी, जो 9 साल तक लगातार अजेय थी, 9 साल तक कोई भी कुश्ती नहीं हारी थी, 155 मुकाबला उन्होंने लगातार जीता था। 57 किलोग्राम वर्ग में उत्तर कोरिया की विश्व पदक, जो रजत पदक विजेता खिलाड़ी है इल सिन सोन, उन्होंने उनके जो रथ का जो घोड़ा था लगातार अजय जो रथ पे सवार थी पिनफॉल करके उनको शिकस्त दी। आपको ये भी बता दूं, इसी खिलाड़ी ने आज भारत की जो खिलाड़ी मनीषा उसको हराकर 155वीं जीत दर्ज की थी, लेकिन 156वीं जीत दर्ज नहीं कर पाए दोस्तों। और क्या कुछ घटित होता, क्या रिकॉर्ड्स बनते हैं, आने वाले अगले घंटे में आपको बताएंगे जब हम आपसे मुखातिब होंगे 3:30 पर। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और साक्षी मांडवाल को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

0: पाकिस्तान को हरा कर ओवरऑल इन अ वेरी कन्विंसिंग मैनर बोथ द इंडियन वुमेन एंड मेंस टीम गेटिंग अस द गोल्ड इन द ऑलिंपिक एशियन गेम्स 2026.
1: एक और कुश्ती का नतीजा सामने आया, हालांकि कोई बहुत अच्छा नतीजा नहीं रहा है. भारत के सागर जगलान को पुरुषों के फ्रीस्टाइल 74 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में कजाकिस्तान के नुरकोस कैपनाओ के खिलाफ 0-5 से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के साथ सागर का एशियन गेम्स में जो अभियान था चौथे स्थान पर समाप्त होगा. यहाँ उम्मीद की जा रही थी कि सागर जगलान भारत के पदकों की जो संख्या वहां इजाफा करेंगे, लेकिन अभी दो कुश्ती बाकी है. अंतिम पंघाल की कुश्ती बाकी, दीपक पुनिया की कुश्ती बाकी. यहां उम्मीद करेंगे कम से कम यहां पर अंतिम पंघाल जो खिताबी मुकाबला लड़ेंगी, स्वर्ण पदक का मुकाबला लड़ेंगी, वहां उम्मीद है वो एक और स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाले. वहीं दीपक पुनिया कांस्य पदक का मुकाबला लड़ेंगे, उम्मीद करेंगे वहां भी वो कामयाब हों.
0: जी, एंड बिफोर वी रैप अप, वेरी क्विकली गिविंग यू अ मेडल टेबल काउंट आल्सो. भारत इस समय पांचवें स्थान पर है, कुल मिलाकर 82 मेडल्स, 20 गोल्ड, 26 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज के साथ. भारत और मलेशिया का गोल्ड मेडल का मुकाबला हॉकी में अब शुरू होने जा रहा है. देखेंगे अगर यहां से भारत जीता तो एक और गोल्ड भारत के नाम होगा, एंड वी स्टैंड टाइड इन दैट केस विद उज़्बेकिस्तान. लेकिन उसके लिए हमें 70 मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ेगी देखने के लिए कि क्या भारत ये स्वर्ण मेडल जीतता है इस मुकाबले में कि नहीं. फिलहाल के लिए मुझे साक्षी मांडवाल और मेरे साथ मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए इजाजत. हम आपके साथ जुड़ेंगे 1 घंटे बाद 4:30 विद द लाइव अपडेट्स वंस अगेन.
2: एशियन गेम्स 2026, आईजी नगोया.

0: జపాన్లో జరుగుతున్న 20వ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏషియన్ గేమ్స్ అప్డేట్స్.
1: हेलो एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. दोस्तों मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद आजमी. घड़ी में बज रहे हैं 4:30 और हम लेकर आ गए आपके लिए अभी के लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026. आज का दिन ऑलमोस्ट समापन पर है. खासतौर से अगर हम बात करें भारतीय नजरिए से कि कौन कौन से भारतीय खिलाड़ी किस किस इवेंट के अंदर आपको खेलते हुए नजर आएंगे. रेसलिंग के अंदर एक बाउट और बचा है और अभी हमारा हॉकी का फाइनल मुकाबला चल रहा है. लेकिन ये फाइनल मुकाबला कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं है दोस्तों, बिकॉज इंडिया इज अप अगेंस्ट मलेशिया इन द मेंस हॉकी फाइनल्स फाइटिंग फॉर द गोल्ड मेडल. यस, एंड इंडिया ऑलरेडी हैज अ लीड ऑफ 1 goal ओवर मलेशिया. द प्रेजेंट स्कोर लाइन रीडिंग 2-1. जी हाँ, और अभी फर्स्ट क्वार्टर अभी इनफैक्ट ओवर भी नहीं हुआ है. फर्स्ट क्वार्टर में अभी 2 मिनट बचे हुए हैं और भारत ने, अगर हम बात करें तो माफी चाहूंगी, फर्स्ट क्वार्टर थर्ड क्वार्टर इनफैक्ट अभी चल रहा है एंड भारत 2-1 से मलेशिया से अभी बढ़त बनाकर आगे चली रहा है. वी विल हैव टू सी हाउ दिस टर्न्स आउट. भारत की तरफ से बता दो कि 11वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने देखा कि जुगराज सिंह ने भी पीसी को कन्वर्ट करके भारत के नाम 2 goal करवाए थे. वहीं पर अगर मलेशिया की बात करें तो शैलो सिल्वरस ने मलेशिया को 1 goal करवाया. द मैच इज स्टिल ऑन, वी विल हैव टू सी हाउ दिस गोज टुवर्ड्स द एंड, बट शायद डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग लीड.
2: बिल्कुल, 2 गोल्ड मेडल भारत के पक्ष में आ सकता है. हॉकी की जैसा आपने बात की, भारत यहाँ पे लीड पे. दूसरा जो आपने बताया कुश्ती के मुकाबला एक बाकी, जी हाँ, उस मुकाबले में भी अंतिम पंघाल अगर जीती थी तो भारत के खाते में गोल्ड आ जाएगा. लेकिन हाँ, एक पदक भारत के खाते में जरूर जुड़ा है. ब्रॉन्ज मेडल की शक्ल में भारतीय दीपक पुनिया ने एशियन गेम 2026 के पुरुषों के फ्रीस्टाइल 97 किलोग्राम वर्ग में जो कांस्य पदक का मुकाबला था वहाँ कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है. इस मुकाबले में दीपक ने मंगोलिया के गंगखुयाग गनबातार को कड़े मुकाबले में 2-1 से हराया. दीपक ने शुरुआत में 2-0 की बढ़त बनाई लेकिन बाद में उन्हें पैसिविटी के कारण 1 अंक गंवाना पड़ा और अंतिम क्षणों में उन्होंने संयम बनाए रखा और 2-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस कांस्य के साथ दीपक पुनिया ने लगातार दूसरे एशियन गेम्स में पदक जीता है. इससे पहले उन्होंने हांगझोउ 2023 में रजत पदक हासिल किया था. इससे पूर्व सेमीफाइनल में जैसा कि दीपक पुनिया ने प्रदर्शन किया था और सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान के सेरजोद पोनेवा के हाथों 8-9 से हार गए थे, जिस वजह से उन्हें कांस्य पदक का मुकाबला खेलना पड़ा.
1: जी, एंड सम गुड न्यूज ऑल्सो, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज द लास्ट डे इन द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026 व्हेन इट कम्स टू सीइंग आर इंडियन प्लेयर्स, आर इंडियन एथलीट्स रिप्रेजेंट इंडिया इन डिफरेंट इवेंट्स व्हेन इट कम्स टू इन द स्पोर्टिंग अरीना. सो दे स्टार्टेड ऑफ ऑन अ गुड नोट वेयर वी हैड आर इंडियन गोल्फर प्रणवी उर्स क्रिएटिंग हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया द एशियन गेम्स 2026. दिस केम आफ्टर अ 24-year-old लॉन्ग वेट. द लास्ट टाइम एन इंडियन वन एन इंडिविजुअल गोल्ड इन गोल्फ वॉज शिव कपूर 2002 में. जी हाँ, और आपको ये भी बता दे कि हमारी गोल्फ की महिलाओं की टीम ने भी इन द टीम इवेंट, मैं बात कर रही हूँ अदिति अशोक, दीक्षा डागर और प्रणवी उर्स की, उसमें भी उन्होंने भारत को आज सिल्वर मेडल दिलवाया है. आर्चरी की बात करें तो कुमकुम महोद ने भी शी ऑल्सो मेड इंडिया प्राउड बिकॉज शी क्रिएटेड हिस्ट्री बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन्स रिकर्व आर्चर टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स. इन अ थ्रिलिंग फाइनल शी बीट हर कोरियन ओपोनेंट ओ येजिन बाय अ शूट ऑफ एंड देयरबाय वी सॉ हर ब्रिंगिंग द कोवेटेड गोल्ड क्रिएटिंग हिस्ट्री.
2: जी, एक और कांस्य पदक भारत के खाते में आते आते रह गया है. सागर जगलान अपना कांस्य पदक का मुकाबला हार गए. वहीं अमन सारावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया. जी हां, अमन ने फाइनल में उत्तर कोरिया का हान चोंग सोंग को 11-7 से हराया. मुकाबले की शुरुआत में अमन 4-1 की बढ़त बना ली थी लेकिन चोंग सोंग ने जोरदार वापसी करते हुए स्कोर 7-6 अपने पक्ष में कर लिया और आखिरी मिनटों में मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया. लेकिन दबाव के इस पल में अमन ने शानदार टेकडाउन लगाकर मुकाबले का रुख पूरी तरह से पलट दिया और स्कोर 11-7 करके गोल्ड मेडल पर अपना नाम लिखवा लिया.
1: जी, और आर्चरी के अंदर ही आपको ये भी बता दे कि हमने देखा कि कैसे 2 भारतीयों का भी आज एक मुकाबला हो गया फॉर द ब्रॉन्ज मेडल. मैं बात कर रही हूँ नीरज चौहान और धीरज बम्मा देवारा की, जिस

0: नीरज चौहान ने धीरज को 6-4 से मेंस इंडिविजुअल रिकर्व में हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही ब्रॉन्ज मेडल भारत का ही नाम रहा क्योंकि दो भारतीय थे। द गुड न्यूज ऑफ द बेस्ट पार्ट वाज दैट इट केम बैक टू एन इंडियन एंड इन दिस केस दिस वाज नीरज। एंड उसके बाद वी हैव टैक्वांडो के अंदर भी जहां कशिश मलिक हैज बोर्ड आउट ऑफ द वुमेन्स 56 केजी राउंड ऑफ 16 इवेंट एट द एशियन गेम्स 2026। इन द वुमेन्स 67 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 इन टैक्वांडो ज्योति यादव आल्सो लॉस्ट टू कानालक चोनकोलिन 0-2 एंड thereby भारत की कैंपेन स्पोर्ट के अंदर आके खत्म हो गई।
1: जी बिल्कुल, और भारत अब जो मेडल टेबल उसके चौथे पायदान पे पहुंचने के बेहद करीब है। देखना होगा क्या वहां पहुंच पाता। उज्बेकिस्तान के 21 गोल्ड, भारत के 20 गोल्ड है। अभी 2 गोल्ड भारत के पक्ष में आ सकता है कुश्ती और हॉकी से। देखना होगा अगले एक घंटे में क्या कुछ घटित होता है, तस्वीर साफ हो जाएगी, जरूर बताएंगे। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और साक्षी मांडवाल को ठीक 5:30 बजे की अपडेट तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया। अभी

ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।